0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मैले मेरो बुट्टु बुट्टु भनेर अरूलाई सुम्पिएको छु मेरी छोरीले दुखेको छ
2: थिएटर सिनेमाज घोराई दस पौडी कुला दाङमा प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
3: आमा म पढ्छु नि
4: के अरे बाउलाई सिक्याउ तँलाई पढाउन बेदर ल्याऊ
5: तिमीले पढ्न आउँछ
6: माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अङ्ग्रेजीमा
7: बनाना आई लभ यू

0: कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बायोनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबी नेट 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिप इन टाइम। यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ
1: मध्य पश्चिम ट्रान्जेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वस्थ श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वस्थ श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादक
1: मध्यपश्चिम चाङ च्याक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

0: Bionet को buy one gift one free offer मा तीन महीना को 125 Mbps इंटरनेट और 2700 में खरीद कर दा स्वी इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट Bionet अब सबै कनेक्टेड
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम FM 91.4 MHz

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिझाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादक
1: मध्य पश्चिम चाङच्याक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङ प्रहरीले गाउँघरमा लुकाई सिपाहीधरलाको विभिन्न समयमा आपराधिक घटनामा प्रयोग भइसकेका अवैध हतियार खोजतलास ओ बरामद गर्न अभियान हन तीव्रता दिए राखल। विगत 3 आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क ओ चालू आर्थिक वर्षको साउन 19 गतेसम्म हेरबेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङसे 144 नाल भरुवा बन्दुक बरामद गरी राखल। प्रहरीको तथ्याङ्क हेरबेर आर्थिक वर्ष 2080-81 9 नाल, आर्थिक वर्ष 2081-82 14 नाल ओ आर्थिक वर्ष 2082-83 पूर्ण नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरेबाट समाजमा हिंसकको सामान्य झैँझगडा, वन्य जन्तुको चोरी सिकारी वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा अश्लील हतियार प्रयोग हिंसकना वा मानवीय क्षतिको जोखिम हुन मध्यनजर गर्दै विशेष अभियान सञ्चालन गरिकन अवैध हतियार बरामद गर्न काम हुन प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले बतवा रखल। दाङ प्रहरीले यही आर्थिक वर्ष 2083-84 को साउन महिनामा केल 90 नाल बन्दुक बरामद गरिराखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार पाछका 4 दिनको अवधिमा 55 नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिराखल। जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा लुकाई छिपाई धर्गिलका 55 नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद करगिलक प्रहरी जना राखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा साउन 16 गते से 19 गतेसम्म सञ्चालन करगिलक विशेष अभियानका क्रममा जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्र से भरुवा बन्दुक बरामद करगिलक हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कमरे चौर से खरगिलक टोली से बंगलाचुरी गाउँपालिका 5 का हिमाल लाली गुराज सामुदायिक वनमा लुकाई छिपाई धर्गिलक एक नाले भरुवा बन्दुक 7 नाल, खारखोली सामुदायिक वनमस्ते भरुवा बन्दुक 8 नाल ओ एक ठो नाल केल कैकन 9 नाल बरामद करगिलक प्रहरी निरीक्षक एक बहादुर नेपाली से जानकारी दिएरखल। विपन्न ओ बेरोजगार युवाहरू सिपमूलक तालिम मार्फत रोजगारी ओ स्वरोजगारी म जोड्न उद्देश्य से घोराई बनाउ अभियान ओ इन्सपायर यु एकेडेमी बीच 6 बुधे सम्झौता हो रहल। सम्झौतामा घोराई बनाउ अभियानको संयोजक सबिन प्रियासन ओ इन्सपायर यु एकेडेमीका निर्देशक बलभद्रक ओलीसे हस्ताक्षर कर्लखुट। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको विशेष उपस्थितिमा सम्झौता सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल। कार्यक्रममा बोल्ती पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सुवेदीले विपन्न युवाको नक्ला स्वरोजगार बनाइकला करगिलक कार्यक्रम प्रशंसनीय हुइलक बटवा रखल। सम्झौता अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर विपन्न तथा बेरोजगार युवाहन पूर्ण रूपमा निशुल्क बजारमुखी सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेबा। तालिम अन्तर्गत कफी बारिस्टा बेकरी कुकिङ वेटर हाउसकिपिङ ग्राहक सेवा कम्प्युटर लगायत रोजगारीको उच्च सम्भावना हुलक विभिन्न विषय समेटगेलबाट दुनो संस्था से युवाहन केवल तालिममा सीमित निधैकन प्रत्यक्ष रोजगारी से जोड्न लक्ष्य लिहलबाट सम्झौताको द्वासर बुदामा प्रशिक्षणार्थी छनौट प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष बनाइन उल्लेख करगिलबा। दुनो संस्थाको संयुक्त समन्वयमा आवश्यक मापदण्डका आधारमा प्रशिक्षणार्थी छनौट गरिनेबा। उस्ताका महिला दलित जनजाति अपाङ्गता हुलक व्यक्ति तथा पिछडिलक समुदाय युवाहन विशेष प्राथमिकता देजिना व्यवस्था करगिलबा। उसको तालिम सफलतापूर्वक पूरा करला कम्तीमा 70% परीक्षार्थी हन होटल रेस्टुरेन्ट कफी हाउस बेकरी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा इन्टर्नशिप ओ रोजगारी कलाक सहजीकरण गर्जिना सम्झौतामा उल्लेख बा। यसै सिपसिकल सेफे रोजगारी निपैना समस्या हन न्यूनीकरण कर सहयोग पुग्न अपेक्षा करगिलबा। पाकेका नेपालगंज उपमहानगरपालिका 19 भैयापुर स्थित न्यू किसान इट्टा भट्टामा पर्खाल भटकबेर 2 मजदूरको मृत्यु हो रहल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको सूचना अधिकारी प्रहरी नायक प्रताप सिंह रठौरका अनुसार रजब अली साई संचालित उक्त इट्टा भट्टामा साउन 18 गते बिहान करिब 11:20 बजे पर्खाल अचानक भर्कबेर उहो काम करती रलक 2 मजदूर पुर्गिल रह। उहाँका अनुसार नेपालगंज 19 निवासी 52 वर्षे वर्षादी लोथको घटना स्थलमै मृत्यु हुइल रह। कलस्ते नेपालगंज उपमहानगरपालिका 20 परिसर निवासी 45 वर्षे रामफेरन कोरी गम्भीर घाइते हुइल रह। गम्भीर घाइते कोरी हन उपचारका लागि भेरी अस्पतालमा भर्ना करगिल रह। उपचारका क्रममा आज बिहान 3:30 बजे उहाँका मृत्यु हुलक प्रहरी नायक उपरीक्षक र छौरा बटवा रखल।
ओ नेपाल सरकार मंत्री परिषद का आज को वैश्विक बैठक से विभिन्न क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कई राखल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का कार्यालय के प्रस्ताव अनुसार तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत करगिल उष्णक लगानी बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद में काठमाडौं का एंकी युवांग युवा ग्रहण नियुक्त गर्न निर्णय परिषद सिकै राखल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समिति गठन आदेश 2054 खारेज गर्न निर्णय कै राखल उष्णक नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समिति हन नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड से गाभ स्वीकृति प्रदान करगिल्बा कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव टेक्कन पशु वधशाला ओ मासु जाँच एन 2055 हन चरणबद्ध रूप नेपाल राज्यभर लागू करना निर्णय कर राखल महिला मंत्रालय को प्रस्ताव में बाल बालिका संबंधी पहिलो संशोधन विधेयक 2083 संघीय संसद समक्ष पेश कर स्वीकृति प्रदान करगिल बा शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का सिफारिश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिक्त अध्यक्ष पद्म पर्वत का प्राध्यापक डाक्टर खड्क बहादुर केसी और सचिव पद्म भोजपुर का प्राध्यापक डाक्टर राजेश श्रेष्ठ नियुक्त करगिल बा भुइठा दाजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्ने भाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सक्पु संग्रहसँग मैं शालिकराम चौधरी विदा हिटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: प्रोडक्टहरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइज क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोकोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज।